0: GFM 88 नेटवर्क दे।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: दिल बेच के दिल पर माही नू

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

लाइ घटि रक़म रखण जो इंकिशाफ़। बजट दस्तावेज़नि मूजिबि सिंध जे अहम मनसूबे सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे जे लाइ रुॻो 30 अरब रखण जी तजवीज़। सिंध कोस्टल हाईवे मनसूबे जे लाइ बि 25 अरब ऐं बहिराण हाईवे जे लाइ बि रुॻो 21 अरब रखण जी तजवीज़। कराची बल्क वॉटर सप्लाई मनसूबे जे लाइ 10 अरब रखण जी तजवीज़। रेलवे जे ML1 मनसूबे जे लाइ 25 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। मेहमन डेम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जे लाइ 26 अरब रखण जी तजवीज़। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाइ 21 अरब रखण जी तजवीज़। दानिश स्कूल जे लाइ 22 अरब रखण जी तजवीज़ शामिल। नए माली साल जे बजट में सालियानी तरक़ीअ जी शरह 4% रखण जी तजवीज़। सनअती तरक़ीअ जो हदफ़ बि 4% रखण जी तजवीज़ शामिल। मजमूई सीड़पकारी जो हदफ़ 15% रखण जी तजवीज़। तरक़ियाती बजट 1000 अरब रखण जी तजवीज़ शामिल। बजट दस्तावेज़नि मूजिबि वफ़ाक़ी वज़ारतुनि जो तरक़ियाती बजट 682 अरब 48 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़ शामिल। सिहत वारी वज़ारत जो तरक़ियाती बजट 16 अरब 6 करोड़ रखण जी तजवीज़। वफ़ाक़ तहत सूबाई तरक़ियाती मनसूबनि जे लाइ 88 अरब 23 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़ शामिल। हाउसिंग वारी वज़ारत जे लाइ 16 अरब 39 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। वफ़ाक़ी तालीमी मनसूबनि जे लाइ 36 अरब रखण जी तजवीज़ शामिल। फाइनांस डिवीज़न जो तरक़ियाती बजट 1 अरब 44 करोड़ रखण जी तजवीज़। दिफ़ाई पैदावार जे लाइ 97 करोड़ 98 लख रुपया रखण जी तजवीज़। सूबनि जे तरक़ियाती मनसूबनि जे लाइ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी माणण जी दावा करे छॾी। तेहरान सां जल्द माहिदे ते सयूं थियण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान खे जंग में शिकस्त ॾेई छॾी, हाणे माहिदे ते सयूं थियणियूं आहिनि। ईरानी सुप्रीम लीडर माहिदे ते राज़ी थी वियो आहे। सयूं यूरोप में थींदियूं। माहिदे ते सही वारी तक़रीब में नायब सदर JD Vance शरीक थींदो। माहिदो थींदे ई अबनाए हरमुस बि मुकमल तौर खुली वेंदो। अमेरिका सां अञा ताईं कंहिं बि वाइदे खे हथ में शिकिल नाहे ॾिनी। पाकिस्तान ऐं कतर सालसी में फ़ाल किरदार अदा करे रहिया आहिनि। ईरान अमेरिकी सदर जे वाइदे ते पहुचण वारनि ख़बरुनि खे रद्द करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ारत चयो आहे त वाइदे जो वॾो हिसो तयारु आहे, पर अमेरिका बार बार पंहिंजी पोज़ीशन तब्दील करे रहियो आहे। अमेरिकी कदम सफ़ारती अमल खे मुतासिर करे रहिया आहिनि। तेहरान रेड लाइन्स ते ठाह न कंदो।

नवाबशाह भरिसां सोटनि में ज़मीनी तकरार तां छेड़ो ॿ भाइर क़तल टे भाइर ज़ख़्मी सकरन रोड ते लांडी स्टॉप वटि फायरिंग में सरमद ऐं असलान जमाली क़तल थी विया टे भाइर फैसल सऊद ऐं सलमान जमाली ज़ख़्मी थिया मक़तूलनि जे वारसनि चयो आहे त ॿई भाइर पेपर ॾियण जे लाइ यूनिवर्सिटी विया हुआ कोट गुलाम मोहम्मद वेझो घरेलू तकरार तां भाइरनि में छेड़ो थियो नंढे भाउ सां वॾो भाउ क़तल जवाबदार अली लिगारी वॾे भाउ राशिद लिगारी खे कुहाड़ी जा वार करे क़तल कयो जवाबदार फरार सखर जे गरम गोदी वारे इलाइक़े में ॿ ॿार कालरा विखे हयाती विञाए वेठा पंजनि सालनि जी निंगरी ऐं ॿिनि सालनि जो ॿारड़ो कालरा विखे फुत थिया सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरणा जरवार में काज़ीबाह जे आबादगारनि जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ वलूमहर में एहतजाज आबपाशी अमले ते रिश्वत

मुंड वारनि आबादगारनि खे पाणी धाम पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। गाज़ियाबाद में मीर रुकन शाखा जी पुछड़ीअ में पाणी जी शदीद खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबपाशी अमलदारनि ते पाणी विकिरो करण जो इल्ज़ाम। पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। छाछुर जे ॻोठ काग्या में पीअण जे पाणी जो सतो बहरान। रहवासियुनि जो ख़ाली थांव खणी एहतजाज। ॻोठाणनि मूजिबि 5000 खां वधीक आबादी पीअण जे पाणी जे लाइ सालनि खां परेशान आहियूं। पाणी फराहम कयो वञे।

अहमदाबाद में माझन तालके के बुनियादी सहूलतों न मिलने खिलाफ़ एसयूपी ऐं रहवासियुनि जो पैदल 2 किलोमीटर पैदल मार्च करे गैस कंपनी जे गेट अॻियां धरणो हणी कैंप क़ाइमु करे वरिती। तालके खे गैस समेत बुनियादी सहूलतूं

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: संकेत जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो इलाज कयो वेंदो आहे। डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, इनमें फुली एब्जॉर्ब हो और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाँ हैरत तंगे जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अमाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बे का सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो जिगर की गरमाइश, गुर्दे की पथरी, सोज, पुरानी जुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियन की खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर से हलन, फालेज, शुगर, दिमाग सूर, खूनी बादी बवासीर, इन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक, भरो जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड सकर। वधिक मशोरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-768।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मेरे YouTube चैनल नदीम अब्बास खान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए आने वाले गीतों को सुनने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाइए।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोड़ी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा, जिसके लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हर कोल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। ये वो मंसूबा है जो हमारी मकामी तवानाई के जखायर को कौमली नकल व हमल के निजाम से जोड़ेगा। इसके अलावा गवादर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और चारों सूबों में ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के लिए 93 अरब से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई है, ताकि पूरे मुल्क में 23 तर नकल व हमल के जराए दस्तियाब हो सके। सस्ती, काबिल एतमाद और पायदार तवानाई की फराहमी इस हुकूमत का अज़्म और मईशत की बुनियादी ज़रूरत है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में बिजली के शोबे के लिए 116.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें कलीदी हाइड्रो पावर मनसूबे जैसे डासू हाइड्रो पावर मनसूबा, तरबेला डैम की 5वीं तोसी और मोमन हाइड्रो पावर मनसूबा शामिल है। बिजली की तरसीली सलाहियत बढ़ाने के लिए सेटकॉम और बैटरी स्टोरेज जैसे जदीद निज़ामों में सरमायाकारी के लिए 10.2 अरब और 3 अरब रुपए शामिल हैं। सनअती तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजली की फराहमी को तरजीह दी गई है। साफ और काबिल तजीज तवानाई के 9 मनसूबों के लिए वापडा को 50.2 अरब रुपए फराहम किए गए हैं। इसके अलावा आजाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में 8 हाइड्रो पावर मनसूबों के लिए 13.1 अरब रुपए की खसूसी रकम मुख्तस की गई है। मजीद बराम वापडा और नेशनल ग्रिड कंपनी अपने इंफरादी वसाइल से 158 अरब रुपए से जायद की सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान को पानी के कई संगीन चैलेंजेस का सामना है, जैसे स्टोरेज की कमी होती सलाहियत और मौसमियाती तब्दीली से आने वाले सैलाब। गुज़श्ता साल दरियाओं में आने वाले सैलाब ने हमारी
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: शेरीज स्टूडियो प्रेजेंट्स।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जॾहिं त घटि में घटि माहवार अजूरो 10% वधाइण जी बि तजवीज़ शामिल आहे। नंढनि दुकानदारनि लाइ फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ़ कराइण जो बि ऐलान कयो वियो। सालियानो 20 करोड़ आमदनीअ खां घटि वारा दुकानदार टैक्स सिस्टम में शामिल थींदा। नंढा दुकानदार टैक्स रिटर्न जमा कराइण वक़्त घटि में घटि 25,000 रूपया जमा कराईंदा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी रक़म में 17% वाध जी तजवीज़ डि॒नी वई आहे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाइ 838 अरब रूपया रखण जी तजवीज़ शामिल आहे। सालियानो 32 खां 41 लख आमदनी ते टैक्स जी शरह 30 मां घटाए 25% करण जी तजवीज़ डि॒नी वई। सालियानो 41 खां 56 लख रूपया आमदनीअ ते टैक्स जी शरह 35 मां घटाए 29% करण जी तजवीज़ शामिल आहे। सालियानो 56 खां 70 लख आमदनीअ ते टैक्स जी शरह 35 मां घटाए 32% करण जी तजवीज़ डि॒नी वई। मिल्कियतुनि जी मुंतकिले ते लागू विद होल्डिंग टैक्स 2.5 मां घटाए 1.25% करण जी तजवीज़ शामिल आहे। मिल्कियतुनि जे विकरे ते विद होल्डिंग टैक्स 5.5 मां घटाए 2.75% करण जी तजवीज़ डि॒नी वई। क्रेडिट या डेबिट कार्ड जी परडे में इस्तेमाल ते 5% विद होल्डिंग टैक्स 2.5% करण जी तजवीज़ शामिल आहे। 50 करोड़ रूपयनि खां वधीक आमदनीअ ते सुपर टैक्स जी शरह 10 मां घटाए 8% करण जी तजवीज़ डि॒नी वई। जड॒हिं त FBR टैक्स उगाड़नि जो हदफ 15,264 अरब रूपया रखण जी बि तजवीज़ डि॒नी वई आहे। 22 खां 32 लख सालियानो कमाईंदड़ लाइ टैक्स शरह 23 मां 20% करण जी तजवीज़ डि॒नी वई आहे। नाणे वारे वज़ीर जो चवणो हो त वफ़ाकी हुकूमत जी कुल ख़र्चनि जो काथो 18,771 अरब रूपया आहे। 8,054 अरब रूपया व्याज जी अदायगी लाइ रखिया वेंदा। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर में वधीक चयो आहे त PSTP लाइ 1,000 अरब रूपया रखिया विया आहिनि। वफ़ाकी हुकूमत जे ख़र्चनि जो काथो 17,495 अरब रूपया आहे। मुल्की दिफ़ा लाइ 3,000 अरब रूपया फराहम कया वेंदा। बजट तकरीर खे ख़िताब कंदे नाणे वारे वज़ीर जो वधीक चवणो हो त कुफालत प्रोग्राम खे 1,20,00,000 खानदाननि ताईं वधायो वेंदो। मोहम्मद औरंगज़ेब जो वधीक चवणो हो त वज़ीर आज़म अपना घर अपनी छित स्कीम लाइ 71 अरब रूपया रखिया विया आहिनि। बैंकनि तेल ऐं गैस जी ॻोल्हा कंदड़ कंपनीज़ ऐं फर्टिलाइज ते सरचार्ज बरक़रार आहे। IT बरामदात जी आमदनी ते 2.5% FTR में रियायत वधीक 3 साल रखण जी तजवीज़ शामिल आहे। जॾहिं त FTR रियायत 30 जून 2029 ताईं जारी रखण जी तजवीज़ शामिल आहे। परडेही असासा रखण ते कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़तम करण जी तजवीज़ डि॒नी वई आहे। आज़ाद कश्मीर खे 146 ऐं गिलगित बल्तिस्तान खे 88 अरब रूपया डि॒ना वेंदा।

0: போனகலந்து சாபுதை சோரா.
1: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दुकानदारनि लाइ फिक्स्ड टैक्स सिस्टम मुस्तारफ़ सालियानो 20 करोड़ रुपियनि ताईं विकिरो कंदड़ दुकानदार फिक्स्ड टैक्स सिस्टम में शामिल थींदा। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर कंदे चयो त फिक्स्ड टैक्स सिस्टम तहत नंढा दुकानदार टैक्स रिटर्न जमा करण वक़्तु घटि में घटि 25,000 रुपया जमा कराईंदा। नए माली साल जी बजट में गाड़ियूं वधीक महांगियूं थी वयूं। ॿाहिरां गाड़ियूं घुराइण ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाइण जो फ़ैसिलो। 2000 खां 3000 सीसी ताईं GSUVs गाड़ियुनि ते बि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाई वई। 3000 सीसी खां वॾियुनि गाॾियुनि ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी में वाधि। 2 करोड़ खां महांगियुनि इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते बि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाइण जी तजवीज़ ॾिनी वई। इलेक्ट्रिक मोटर साइकल्स, ईवी रक्षाइनि ऐं ईवी बसनि ते रियायती निज़ाम बरकरार रहंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी रक़म में 17% इज़ाफ़ो कंदे 838 अरब रुपया रखी छॾिया। कफ़ालत प्रोग्राम खे 1,20,00,000 ख़ानदाननि ताईं वधाइण जो फ़ैसिलो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर कंदे ॿुधायो त वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम लाइ 71 अरब रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। मिल्कियतनि जी मुंतकली ते लागू विद होल्डिंग टैक्स में घटताई जी तजवीज़। फाइलर लाइ मिल्कियत जी ख़रीदारी ते विद होल्डिंग टैक्स 28% मां घटाए 1.25% कयो वियो। फाइलर लाइ मिल्कियत जी विकरे ते बि विद होल्डिंग टैक्स 5.5% मां घटाए 2.75% करण जी तजवीज़।

0: अफाकी हुकूमत परडे॒ही वेंदड़ अमीरनि खे वॾो रिलीफ ॾेई छॾियो। जहाज ऐं बिज़नेस क्लास में सफ़र करे परडे॒ही वेंदड़नि लाइ टैक्स में घटिताई। परडे॒ही में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करण ते लागू 5% विथ होल्डिंग टैक्स 5.5% कयो वियो। ग़ैर मुल्की असासन ते कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़तम करण जी तजवीज़। हुकूमत बिजली जे शोबे ऐं रोडनि जी तामीर जे मुख़्तलिफ़ मनसूबनि लाइ बि पैसा रखी छॾिया। दियामीर बादशाह डैम लाइ 14 अरब, बहमद डैम लाइ 22 अरब ऐं दासू पन बिजली मनसूबे लाइ 15 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। के फोर मनसूबे लाइ 10 अरब रुपया रखिया विया। इन 25 खे डबल करण लाइ 100 अरब मुख़्तस। सखर हैदराबाद मोटरवे लाइ 30 अरब रुपयनि जी सीड़पकारी थींदी। ML1 लाइ 25 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। नाणे वारे वज़ीर मूजिब 10 वॾनि शहरनि लाइ डिजिटल मास्टर प्लान तयार बि कया वेंदा। वफ़ाक़ी काबीना नए माली साल जी बजट जी मंज़ूरी ॾिनी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त अल्ला ताला जे फज़ल ऐं करम ऐं क़ौम जी दुआउनि सां माशी मज़बूती हासिल कई। हाणे ख़ुशहाली जो वक़्तु शुरू थी चुको आहे। माशी इस्तेहकाम सबबि अॼु हुकूमत बजट में अवाम खे रिलीफ फराहम कयो। ॾुखियनि हालतुनि में सब्र जो मुज़ाहिरो करण ते पाकिस्तान जे हर शहरी जो थोरायतो आहियां। हाणोकी बजट में अवाम जी रिलीफ भलाई ऐं इहा पघारदार तबिके ते पार घटण लाइ क़दम खया विया आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत बजट इजलास खां अॻु नाराज़ थियल पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे परचाए वरितो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी मुलाक़ात खां पोइ घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी बिलावल भुट्टो खे परचाए ऐवान में वठी आयो। गिलगित इलेक्शन ते ख़दशा ख़तम करण जी ख़ातिरी खां अॻु बिलावल बजट इजलास में शिरकत न करण जो फ़ैसिलो कयो हो। पघारनि में घटि में घटि 50% इज़ाफ़ो कयो। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाज़िम रस्तनि ते निकिरी आया। शरह दस्तूर ते धरणो। पार्लियामेंट हाउस ॾांहुं वञण दौरान पुलिस ऐं मुलाज़िमनि विच में चकरियूं बि थियूं। केतिरा ई मुलाज़िम गिरफ़्तार। मुलाज़िमनि जो चवणु हो त एतिरी महांगाई में पघारनि में घटि 50% इज़ाफ़ो थियणु घुर्जे। अमेरिका ऐं ईरान विच में इम्कानी मुआदे जा तफ़सील साम्हूं अची विया। लबनान समेत समूरनि महाज़नि ते मुकमल जंगबंदी वारी तजवीज़ बि शामिल। ईरानी मीडिया मूजिबि इम्कानी मुआदे में ईरान जी ख़ुदमुख़्तारी जो एतराम ऐं अंदरूनी मामलनि में मुदाख़लत न करण वारी तजवीज़ बि शामिल। अमरीका 30 ॾींहनि अंदरि ईरान जी बहिरी नाकाबंदी ख़तमु कंदो। तेहरान बि 30 ॾींहनि अंदरि अब्राहम हुर्मुज़ खे बहिरी ट्रैफ़िक लाइ खोलींदो। ईरान जे तेल ऐं पेट्रोकेमिकल शयुनि तां पाबंदियूं हटाइण वारो नुक़्तो बि शामिल। ईरान जी नई सरताबीर लाइ $300 जा मनसूबा बि शामिल। एटमी प्रोग्राम ऐं पाबंदियुनि जे ख़ात्मे ते ॻाल्हियुनि जो अमल 60 ॾींहनि में मुकमल कयो वेंदो। ईरान जा $24 अरब जा मुंजमद असासा भलेवार जारी कया वेंदा। अमेरिका ऐं ईरान में मुआदे ते सहियूं स्विट्ज़रलैंड जे शहर जरीवा में थींदियूं। G7 जे इजलास दौरान मुआदे ते सहियूं कयूं वेंदियूं। परडे॒ही मीडिया जी दावा। ईरानी परडे॒ही वज़ारत चयो आहे त अमरीका सां अञा ताईं कंहिं बि मुआदे खे हतमी शिकल नाहे ॾिनी। पाकिस्तान ऐं क़तर सालिसी में फ़ाल किरदार अदा करे रहिया आहिनि। नवाब शाह भरिसां सोटनि में ज़मीनी रकार तां जहिड़ो। 2 भाइर क़तल, 3 भाइर ज़ख़्मी। सकरन रोड ते लांडी स्टाफ वटि फायरिंग में सरमद ऐं अरसलान जमाली क़तल थी विया। 3 भाइर फैसल सऊद ऐं सलमान जमाली ज़ख़्मी थिया। मक़तूलनि जे वारिसनि चयो आहे त 2 भाइर पेपर ॾियण लाइ यूनिवर्सिटी विया हुआ। कोट ग़ुलाम मोहम्मद वेझो घरेलू तकरार तां भाइरनि में जहिड़ो। नंढे भाउ हथां वॾो भाउ क़तल। जवाबदार अली लगारी वॾे भाउ राशिद लगारी खे कुहाड़ीअ जा वार करे क़तल कयो। जवाबदार फरार। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पाणी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हाणे हे हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं पर जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: जो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
4: GFM 90.8।

नंढनि दुकानदारनि लाइ फिश टैक्स सिस्टम मुतारफ़। सालियानो 20 करोड़ रुपियनि ताईं विकिरो कंदड़ दुकानदार फिक्स्ड टैक्स सिस्टम में शामिल थींदा। थाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर कंदे चयो त फिक्स्ड टैक्स सिस्टम तहत नंढा दुकानदार टैक्स रिटर्न जमा कराइण वक़्त घटि में घटि 25,000 रुपया जमा कराईंदा। चालीह साल जी बजट में गाॾियूं वधीक महांगियूं थी वियूं। ॿाहिरां गाॾियूं घुराइण ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाइण जो फ़ैसिलो। 2,000 खां 3,000 सीसी ताईं जी एस यू वेस गाॾियुनि ते बि फेडरल एक्साइज ड्यूटी लॻाई वई। 3,000 सीसीअ खां वॾियुनि गाॾियुनि ते फेडरल एक्साइज ड्यूटीअ में वाधि।